करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आ डोगरी दी धी नेहा तुंदे सारे आस्ते लेई आई हां डोगरी रेडियो ते अस गल करा दे डोगरी लैंग्वेज दी, डोगरी भाषा दी। जियां कि मैं तुसें दस्सा दी ही कि टाकरी लिपि दा निकली ही, पर जियां कि अज जम्मू दे बिच भी बहुत लोग हन जो अपनी भाषा की नहीं बोलदे, पर मैं मन्नी आ कि जेड़ी डोगरी भाषा है वो साड़ी माँ है, ते हिंदी है वो साड़ी दादी है, ते माऊ थार माँ होनी चाहिए है, ते दादी थारे दादी होनी चाहिए। पर फिर भी कुछ लोग ने जो बड़े चिकदे ने, शर्मांदे ने, ते कई ते वो भी कैटेगरी है लोगों की जो आखते हैं अगर डोगरी बोल के तो ग्राई सही हो गए। ठीक है, मैं समझनी हर भाषा का ज्ञान होना बड़ा ही जरूरी है, एक पर्सनल डिवलपमेंट आस्ते हर भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, पर अपनी जड़ें भुलाना केड़ी समझदारी है। अपनी जड़ें दा अपनी पुरानी जड़ी अस जितों आए ने, जो साड़ी ओरिजिनल भाषा है वह भुलाना भी कोई समझदारी तो नहीं है, वह भी असं ज्ञान होना चाहिए उसका भी, तो असं अपने बच्चों की भी वह सिखानी चाहिए है। तो सुनो अगला गीत, तो मैं करनी फिर अगली बार वो बाद।

मता मता स्वागत है तुंदा डोगरी रेडियो च। मैं आज ते आरजे तुंदी डोगरी रेडियो दी नेहा। ते मैं जिया तुसीं दस्या कि टाकरी लिपि दा निकली दी है, पर बड़े सारे लोग ना जिन्हें की टाकरी दा ज्ञान गे नहीं रहा है, विलुप्त होई है, जिया कि साड़ी भाषा विलुप्त होआ करदी है। ते अजकल सिधारत तौर पर इसी देवनागरी लिपि च लिखिया जांदा है। ते ये जिहड़ी है इहदा सॉलिड बेस है इस भाषा दा, उह संस्कृत बेस्ड है। आई भी कई वर्ड हन जो सिमिलर हन संस्कृत दे ते डोगरी दे, या ते मीनिंग सेम होई जांदा हुंदा या फिर वो फोनेटिक थोड़ा जिहा चेंज होई जांदे ने। जियां कि संस्कृत दा वर्ड तुसीं लाओ यात्रा, जो कि डोगरी च आखा जांदा है यात्रा। अगर संस्कृत दा वर्ड तुसीं चुको हसा, ते ये डोगरी च होई जांदा है आसा। ते डोगरी भाषा सिर्फ डुग्गर प्रदेश च ही नहीं बोली जांदी है, ये पंजाब के कुछ इलाके च भी बोली जांदी है, जियां कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, उआं गई हिमाचल प्रदेश च भी बोली जांदी है। डोगरी भाषा ते हिमाचली भाषा बहुत ही सिमिलर है, पर हिमाचल दे आए भी कई जगह न जिहदे च प्योर डोगरी बोली जांदी है। ते डोगरी भाषा एक इकली भाषा नहीं है जी जम्मू प्रदेश च बोली जांदी है, इहदे कन्ने होर भी बड़ी पहाड़ी भाषा जो बोली जांदियां। तो सुनो अगला गीत, ते फिर मैं सुनानी हां तुसीं बाकी भाषाएं दे बारे च।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अस गल करा दे डोगरी भाषा दिया। ते जियां कि संस्कृत बेस होंदा है बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस दा, उआं गै डोगरी भी बेस है बहुत सारी और पहाड़ी भाषाएं दा। डुग्गर प्रदेश च और भी बड़ी सारी पहाड़ी भाषा बोली जांदियां ने डोगरी दे अलावा, जियां कि कांगड़ी, सिरमुरी, रामबनी, भद्रवाही, गोजरी, पोंगली, ये नहीं और बड़ी पहाड़ी भाषा जो इस प्रदेश च बोली जांदियां ने। ते मैं ये रिक्वेस्ट करनी है श्रोता गणे कि जो जो भी सुना दे ना, वो जेड़ी भी उंदी अपनी मातृ भाषा है, जो भी उंदी जड़ा ने, अपने आने वाली पीढ़ी की उंदे कोला अवगत कराना बहुत जरूरी है, ताकि जियां तुस नहीं भुले, अब तुंदी पीढ़ी भी अपनी जड़ें की नहीं भुले, ते उन्हें अपनी मातृ भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ते उम्मीद ही इजाजत, मैं फिर परती आगे जंदे आस्ते एक नवी कहानी लईए, एक नवा ज्ञान लईए मेरे डुग्गर प्रदेश का।

0: जब आसस वासस हैबिसस नादित होसे बीसस बोले सोने हाल सस्यकाल।
1: मम्मी पापा दे वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है। शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है। वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल। सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील लई याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763 Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: करेंगे मिस्टर संधू।
1: अच्छा जी।
2: आहो जी, नीड प्राइवेट मॉर्गेज एंड लोन्स? देन कॉल मिस्टर संधू एट 9056712000। नो क्वेश्चंस, नो क्रेडिट चेक, लोन अप्रूवल विद इन 24 आवर्स। नंबर रखो याद, 905-677-2000, 9056712000, मिस्टर संधू।
3: रुपिंदर गरेवाल लॉ ऑफिस, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, विल बनाउन ले, फैमिली लॉ, जा फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ, कम्युनिटी दा जानिया पहचानिया नाम रुपिंदर गरेवाल, बैरिस्टर, सॉलिस्टर एंड नोटरी पब्लिक, लोकेटेड एट चिंक्यूजी एंड बवेट। फॉर ऑल सर्विसेज कॉल 9054971211, 9054971211।
4: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच लिया सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200।
5: हेलो ब्रो, किथे है तू?
6: मैं क्लाइंट नु मिलन जा रहा, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स जे बैठ जाइए।
5: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया, हुन ता क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनिया चाहिदियां ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ उन्हां नु, प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलदी है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस, बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जांदी है ते खाना भी बहुत वधिया।
6: ओहो, ये ता प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
5: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। कोई कॉल करो 9054512600, 9054512600।

0: Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 90545-12600.
1: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज,
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।
7: 6 फुट 2 इंच लंबा

0: अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: चक्कर लगाओ।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना महंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना महंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो मोना महंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: मल्ली टेंट सर्विसेज तुहाडे स्पेशल इवेंट्स दे हर एक साइज दे वाटरप्रूफ टेंट्स प्रोवाइड करदे ने। 10x10 feet तो लेके 40x100 feet दे तंबू ने। टेबल्स ते कुर्सियां भी नाल लेके आउंदे ने ते तुहाडे बैकयार्ड नु बैंक्वेट हॉल वांगू बणाउंदे ने। फैंसी चेयर्स भी अवेलेबल हन, LED ग्लो इन द डार्क बणी बणाईयां बार्स, टेबल्स ते कुर्सियां भी तुसी रेंट कर सकदे हो। अज ही मल्ली टेंट सर्विसेज नु कॉल करो 647-999-2569
5: अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तो सुनते सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी, जाने के देश परदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सैटरडे 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश परदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश परदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551। देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षां तों 7 डेज़ अ वीक तुहाडे अंग संग। चलो AM 530

0: For advertisements and information,
1: Sadi head office nu call karo 416-725-2551 416-725-2551.
2: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजर्बेकार Immigration Consultant, Gary Virk नु मिलो.
3: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो, इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही call करो, 416-456-6161.
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
5: ऐसे ले मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानूं सम्राज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट ले हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते
4: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सम्राज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ TV ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7